इस दुनिया में हर कोई घर चाहता है। घर, घर एक ऐसी चीज है जिसमें हमको सिर्फ चार दीवार नहीं बल्कि प्यार, शांति और सहारा मिलता है। घर एक ऐसी जगह है जहां हमको सिर पर सिर्फ एक छत नहीं बल्कि हमको दुनिया से और हर गम से पनाह मिलता है।